0: One to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination real Punjabi flavor.
1: अरे यार, Dallas में पंजाब?
2: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहां बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म.
3: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
4: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
5: You guys, that was the last ad. Were you listening? Desi Got Talent. पता है यहाँ पे डालस में मेरे को सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है? There is like this massive karaoke scene over here. You know, there are so many karaoke events. You know, Bollywood karaoke that are happening all over DFW. और मतलब कहीं ना कहीं से मुझे किसी ना किसी सिंगर को मतलब दे कीप टेलिंग मी कि अरे आप आओ थोड़ा सा गा दो. मैंने कहा यार मेरे को अभी रेडियो से और बाकी मेरे काम से थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी. मेरे को टाइम नहीं मिलता एक्चुअली जाने का, नहीं तो मैं ज़रूर जाती. बट इफ़ यू आर ए बाथरूम सिंगर और ए लिविंग रूम सिंगर और अ बेडरूम सिंगर और अ डाइनिंग रूम सिंगर, यू कैन बी एनी रूम सिंगर और समटाइम्स यू कैन इवन सिंग इन योर कार. यू गाइज, मैं तो गाड़ी में बहुत गाती हूँ. आपने गाड़ी चलाते चलाते कभी गाना गाया? लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तो पागल हो गई है, पता नहीं क्या चल रहा है. मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आई एम हैविंग फन. तो भाई गाड़ी चलाते चलाते कई बार गाना भी गा लिया करो, फिर ट्रैफिक वगैरह का मतलब वो नहीं मिलेगा, वो इतना सोचना नहीं पड़ेगा. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो हु आई एम एंड हु आर जस्ट ट्यूनिंग इन टू द सेकेंड आवर हियर ऑन अ सैटरडे इवनिंग, माई नेम इज़ इपी रॉय. आप मुझे प्यार से इपी द हिपी भी बोल सकते हैं और मैं बिल्कुल साउथ दिल्ली वाली वाइब्स लेकर आई हूँ भाया प्लीज. हाँ जी एग्जैक्टली, माई नेम इज़ इपी रॉय एंड आई एम द न्यूएस्ट बर्डी हियर एट फन एशिया 104.9 FM. एंड फन फैक्ट, आई एम गोइंग टू बी होस्टिंग माई ओन शो फ्रॉम मंडे विच इज़ द 25th मेमोरियल डे. वाह, बिल्कुल मेमोरी बना लेना मेमोरियल डे के दिन. क्या क्या, व्हाट इज द आयरनी ऑफ दैट? वैसे आई नो मेमोरियल डे किसी और चीज के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, बट एनीवेज हम आज हम इसके लिए सेलिब्रेट कर लेंगे, इसकी मेमोरी बना लेंगे कि भाई इपी रॉय का पहला दिन है. वाह वाह, तो जरूर रेडियो शो सुनना 104.9 FM 7 से 10 बजे तक. हम मजेदार गाने बजाएंगे, वी आर गोना टॉक अबाउट सम fun trendy gossip because you know what, I love spilling the tea. Mujhe to gossips bade acha lagta hai, you know, to sit with my girlfriends and like pata hai usne kya kiya, OMG. And then you know we're going to talk about some dating life situations and we're going to talk about something else. Aur agar aapki zindagi mein agar aapki naukri trast ja rahi hai, aap frustrated hai, uske bare mein bhi baat kar lenge. कुछ कुछ बहुत सारी बातें करेंगे हम, मतलब यू नो कॉल करिए मुझे, वी विल टॉक. बट मंडे के बाद शुरू होगा वो सारा फन कॉन्सेप्ट. आज के लिए हम ऐसे ही थोड़ा चिल करेंगे. वी आर पार्टिंग टुडे इज सैटरडे नाइट. ओके, आई होप यू आर एंजॉयिंग योर सैटरडे नाइट. वी आर गोइंग टू गो एंड डू सम पार्टी म्यूजिक. आई लव डिस्को म्यूजिक एंड आई लव स्टफ अदर काइंड्स ऑफ म्यूजिक दैट इज ऑल्सो प्लेड एट डिस्को. देर आर सो मेनी रियली अमेजिंग क्लब्स हियर इन DFW that I really like going to on a Saturday night. And fun fact, pata kya hai, main ye radio show khatam karke main I'm going to go to one of those clubs and just you know dance my spirit off. Okay, because we are on radio, we are not going to say any controversial words, but we are going to dance my spirit off. And well, you should also go have some fun, meet some friends, bahar jao, Saturday night hai, party shadi karo yaar, daru sharu piyo agar aapki vibe hai wo, nahi to aise hi khana wana khalo, usme kya hai. Khane se yaad aaya, do you guys know about the Fun Pizza Kitchen? It is really quite amazing. Okay, Fun Pizza Kitchen is like पिज्जा विद लाइक अ देसी ट्विस्ट. यू नो, इंडिया में तो हमने बहुत देसी पिज्जा खाए, लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं होता कि भाई इंडियन पिज्जा भी है. अभी बीच में ना मेरी एक रिहर्सल थी, लाइक फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो एंड हु जस्ट ट्यून्ड इन, आई हैव दिस बैंड कॉल्ड डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट एंड वी हैव अ शो टुमारो. वी आर प्लेइंग एट समबडीज वेडिंग एनिवर्सरी एंड यू ऑल द पीपल इन माई बैंड, मोस्ट ऑफ देम आर अमेरिकन्स. ठीक है, तो मैं और हमारे जो दूसरे सिंगर हैं मनोज भाई, हम उनको मनोज भाई बोलते हैं. तो मनोज भाई इज इंडियन एंड आई एम इंडियन, और हम गा रहे हैं बॉलीवुड गाने सारे, और लेकिन मेरा जो पूरा बैंड है वो सारे अमेरिकन्स हैं एंड दे हैव नो आइडिया अबाउट दिस बॉलीवुड म्यूजिक. वी आर इंट्रोड्यूसिंग देम कि भैया ये गाना भी बड़ा जबरदस्त है, ये भी सुनो. देयर लाइक वाओ, वी लाइक दिस सॉन्ग. हम तो यू नो यहाँ के कमर्शियल टॉप 40 गाने, अमेरिकन गाने बजा बजा के बोर हो चुके हैं, सो वी आर एक्चुअली हैविंग फन विद दिस बॉलीवुड 7. आई एम लाइक यस, एग्जैक्टली, बॉलीवुड म्यूजिक इज सुपर फन, इज सुपर इंजॉयबल. एनीवेज, वो बात करते थे मैं तो भूल गई. तो मनोज भाई आते हैं रिहर्सल में एंड यू नो ही इज लाइक मीटिंग द बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही कम्स विद दिस डिलिशियस तंदूरी चिकन पिज्जा एंड लाइक पनीर टिक्का पिज्जा एंड यू आर लाइक वाओ. और इन लोगों ने ना, दे आर अमेरिकन, उन्होंने कभी खाया नहीं है, दे आर लाइक वाओ ये क्या है, व्हाट इज दिस बर्स्ट ऑफ फ्लेवर इन माई माउथ, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, इट्स लाइक वाओ. So, if you want some kind of pizza like that, which is different from the typical pepperoni and cheese and marinara and all of that, you should go to Fun Pizza Kitchen. This is for all my veggie lovers. You have to try their achari paneer pizza. Hai hai, naam sunkar hi paani aa raha hai muh mein. It's packed with that tangy achar punch and soft paneer melting in spicy magic. Oi, oi, oi, oi, oi. And for our meat eaters like me, there is tandoori chicken pizza. Oi, oi, oi, oi, bilkul, ekdam tandoor se nikalta hua fresh chicken aur usko pizza ke upar dalte hue, cheese ke saath melt karte hue, the amalgamation of that is so wow. So, you guys should definitely go try it. And we will talk about something really fun right after I play this song, because I have a little giveaway for this Fun Pizza Kitchen, okay? So, guys, if you want a $10 voucher or a gift card for this Fun Pizza Kitchen, you're going to have to answer that question. I will tell you the question after we play this song. But let's listen to the song first. Enjoy your Saturday night. This is Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.7 FM.
6: Come on, Anna! Woo! Woo!

0: I think she's drunk.
1: You guys, that was such a fun song. We are having fun. We're partying right over here. अब मैंने क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं था, बट कॉलर्स मेरे पास पहले ही आ गए कि अच्छा आपने क्वेश्चन तो पूछा नहीं था. अब की आपने क्या मूवी का नाम का क्वेश्चन पूछा है? मैंने नहीं भाई, मूवी का नाम मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा अभी तक. बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एकदम पेशेंटली और एकदम ध्यान से सुनने के लिए. अब मैं अनाउंस करने वाली हूँ क्वेश्चन, जिसको आंसर करके आपको मिलेगा $10 गिफ्ट कार्ड टू द फन पिज्जा किचन. एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज बेसिकली जस्ट गो ओवर देयर एंड देन यू नो अनाउंस योर विनर नेम एंड देन गिव योर सेल फोन एंड ईमेल आईडी एंड ऑल ऑफ दैट एंड दैट्स इट. दैट इज सो ईजी. सो माई क्वेश्चन इज द ओरिजिनल song, which is the one that I just played, It's the Time to Disco, उसमें तीन singers हैं, तो तीनों singer का नाम क्या है with the last name, और अगर last name है तो tell me the names of all the three main singers that are there in the song, and hopefully you get to win that prize. Let's see who's calling first, but until then enjoy this next song. We're taking a trip back to the 90s over here, you guys.

है, हसीनों का दीवाना हूँ, आवारा हूँ, अनजाना हूँ, आशिकों की हस्ती में, दीवानों की बस्ती में, दिल तोड़ना मेरा काम है, जॉनी जोकर मेरा नाम है।

मेरे नाम पे। यार वो हुक लाइन बड़ी कैची नहीं है, ना ना ना ना ना ना। मुझे तो बचपन में किसी को चिढ़ाते नहीं थे हम लोग कि अरे तूने क्या कर दिया। आई कैन रिमाइंड्स मी ऑफ दैट, बट इट्स स्टिल सो कैची, राइट? आई लव इट, बट दैट सॉन्ग इज सो फन। इट्स गॉट लाइक दिस रियली कूल वीडियो। इफ यू हैव टाइम यू शुड गो चेक आउट द वीडियो ऑन यूट्यूब, इट्स रियली फन। बट एनी वेज गाइज, आर यू अवेयर ऑफ द करेंट इवेंट्स दैट आर हैपनिंग? आई एम श्योर यू वॉच द न्यूज एंड एवरीथिंग, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूज, एज वो सब चीज़ें मैं नहीं बोलती। मेरे को तो मज़ेदार चीज़ें चाहिए होती है। आपने वो वाला देखा जो दिलजीत दोसांझ, जिनका अभी कॉन्सर्ट हुआ था डैलस में? आप गए क्या उस कॉन्सर्ट में? मैं नहीं गई इस बार, 2 साल पहले जब वो आए थे तब मैं उनके कॉन्सर्ट में गई थी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज एक्चुअली इन हिज बैंड एंड ही प्लेज बेस, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मेरे पास 2 फ्री टिकट है, तेरे को आना है दिलजीत के कॉन्सर्ट में? मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल, मैं तो आ जाऊंगी। कहते हैं आ जाना फिर। मैंने कहा चलो ठीक है, काम के बाद आई एल गो टू दिलजीत कॉन्सर्ट। एंड आई थैंकफुली बिकॉज आई न्यू द बैंड मेम्बर, सो आई गॉट टू सिट लाइक राइट इन द फ्रंट एंड इट वॉज सो अमेजिंग। उसके बाद आपको पता है पूरी वो जो फीलिंग आती है ना कि पूरी ऑडियंस नाच रही है एक साथ, सब भंगड़ा कर रहे हैं। मतलब फन चीज ये है कि मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो मुझे भंगड़ा उतना अच्छे से आता भी नहीं है। आई एम नॉट इवन अ पंजाबी, बट आई वाज स्टिल इंजॉइंग इट सो मच। आई वाज लाइक यार यहाँ पे तो भंगड़ा करना बनता है, पूरी ऑडियंस जब कर रही है इट हैज टू बी डन। एंड देन ऑन द स्टेज देयर वर लाइक 15 डांसर्स। दैट कॉन्सर्ट इज वर्थ वॉचिंग, इट्स लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कॉन्सर्ट यू गाइज, इट वॉज सो गुड। यहाँ से फायर वर्क्स आ रही है, वहाँ से उड़ते हुए आ रहे हैं दिलजीत, ऊपर से हार्नेस से उनको उतार रहे हैं। इट वॉज लाइक द बेस्ट थिंग। एंड सिंस दिस टाइम मैं नहीं गई, इफ यू वेंट फॉर द कॉन्सर्ट वाई डोंट यू कॉल मी एंड टेल मी हाउ द कॉन्सर्ट वॉज? डिड यू इन्जॉय इट? डिड यू इन्जॉय द सॉन्ग्स? बट यू नो वॉट वॉज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट? बिफोर द कॉन्सर्ट ही वॉज लाइक ऑन द न्यूज। आई थिंक ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडियन सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट, एक्टर्स, यू नो दैट इन द आर्ट्स फील्ड हु हैज एक्चुअली गॉन ऑन द जिमी फैलन शो। हैव यू सीन दैट जिमी फैलन शो? आई मीन इट कम्स, इट्स वेरी पॉपुलर, यू नो इट। ऑल द बिग आर्टिस्ट हैव गॉन देयर एंड यू नो देव ऑल लॉन्च द न्यू सॉन्ग। ही वेंट एंड ही परफॉर्म्ड हिज न्यू ट्रैक मोरनी, एंड उन्होंने भाई कितना सही था। ही वॉज सो डेक्ड अप इन हिज लाइक फुल पंजाबी अटायर, पग वग डाल के उन्होंने बिल्कुल भंगड़ा किया। मेरे को तो फील आ गई यार वो देख के। मैंने कहा वाओ, सो मच प्राइड इन देयर इन हिज ओन कल्चर। एंड आफ्टर दैट आई ओपन इंस्टाग्राम एंड आई सॉ लाइक सब लोग उसके बारे में शेयर कर रहे हैं, लाइक इवन लाइक द नॉन इंडियन पीपल दे आर डूइंग दैट। दे आर लाइक ओ व्हाट इज दिस डांस मूव, व्हाट इज दिस सॉन्ग, व्हाट इज दिस वाइब, यू नो। एवरीबडी वॉज लाइक सो अमेज्ड एट इट। सो एनी वेज If you haven't seen it, that clip is worth watching. Go to YouTube and search for Morni live on Jimmy Fallon. But until then, enjoy this next track because I'm going to play you. If you haven't heard Diljit's new track called Morni, this is the track you should actually check out. So just check this out. It's so fire, bro.

0: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
1: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
0: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
2: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
3: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
4: सब कुछ साफ रख सकते हो,
5: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती। कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
6: क्योंकि ये कौन बोला?
5: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
2: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: Goodness is a beautiful thing. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
12: Hello, hello, beautiful people. For those of you who are just joining in, मेरा नाम है इपी द हिपी, एक्चुअली इपी रॉय, इप्शीता रॉय, लेकिन प्यार से लोग मुझे इपी द हिपी भी बोलते हैं, मिस इपी भी बोलते हैं, कई लोग मिसेस इपी भी बोल देते हैं, क्योंकि अब मैं अमेरिका में आ गई हूँ भाई। मिसिसिपी, आई फ्लो लाइक द मिसिसिपी ओवर हियर। नो, नॉट रियली, बट आई थिंक माई स्पिरिट डज फ्लो एवरीवेयर, माई एनर्जी डज फ्लो एवरीवेयर, दैट इज करेक्ट। एंड आई एम द न्यूएस्ट बर्डी हियर एट 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you for tuning in. We are in our second hour. Today is Saturday night. भाई मुझे तो पार्टी करने का मूड हो रहा है, पर मेरे दोस्त सारे बिजी हैं, मतलब इतना काम करते हैं, मेरी तरह अभी वर्कहॉलिक्स। देखो सैटरडे नाइट है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सोलो पार्टी कर रही हूँ, रेडियो शो के ऑफिस में बैठ के गाने बजा रही हूँ। लाइक आई एम डांसिंग, आई एम हैविंग फन, आई एम अपलोडिंग इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड ऑल, दैट्स राइट। जिनको नहीं पता, हु हैव जस्ट जॉइंड, यू गाइज, I am a full-time musician. I came here to do jazz and now I'm doing Bollywood band. And my band's name is Dallas Bollywood Project. And tomorrow we are playing a wedding. It's going to be actually somebody's wedding anniversary. And it's going to be super fun. I'm really excited for that show. There's like a garba sequence and like 50s, 1950s ke gaane rock and roll sequence. And there is like this modern dance sequence and everything. So it's going to be such a great party, you guys. I'm really looking forward to dancing on stage and making everyone dance with me. And then I want to enjoy some really delicious, delicious food. Anyways, but that being said, I hope you are enjoying your Saturday. I hope you are going out clubbing or meeting friends for dinner or just having a solo party by yourself with your glass of wine or a peg of whiskey, whatever it is, patiala peg, shag, साथ में थोड़ा चखना भी डाल लो उसमें भाई, कबाब शबाब अगर हो जाए तो मतलब माहौल ही बन जाएगा, लाइक वाओ, है ना. कोई बात नहीं, यहाँ पे आई एम गोना प्ले यू दिस नेक्स्ट सॉन्ग. दिस इज अ न्यू गर्ल ग्रुप, आपने शायद नहीं सुना होगा, दे आर कॉल्ड विश. आई प्लेड दैट ट्रैक वन टाइम बिफोर, बीच में मैंने एक दिन बहुत लेट नाइट शो होस्ट किया था, उस टाइम पे मैंने आई प्लेड दिस ट्रैक. आई लव दिस ट्रैक, ऑल्दो दिस ट्रैक इज नॉट वेरी न्यू, इट्स वेरी ओल्ड, यू विल नो दिस ट्रैक, बट दिस इज इन अ न्यू एवटार. दिस ट्रैक इज लाइक, इट्स कॉल्ड बूम बूम. आई थिंक नादिया हसन की आवाज़ में था ओरिजिनल गाना, बट दे हैव लाइक रीवैम्प्ड इट, एडेड लाइक अ लिटिल रैप सेक्शन एंड एवरीथिंग. आई लव दिस ट्रैक, इट्स सो मॉडर्नाइज्ड एंड इट्स करंट. And I can totally relate to it now. I could relate to the old one also, but this one's more fun. Anyways, I listen to it a lot, especially when I'm running on the treadmill at the gym. Oh yeah, it totally gets me pumped up. So enjoy this next track.

दैट ट्रैक इज सो गुड यू गाइज. मैं तो यहाँ पे खड़ी होकर डांस करी थी. आप नहीं कर रहे थे? आई एम श्योर आप कर रहे होंगे. अगर आप कर रहे हैं तो कॉल करके बताइए. बिल्कुल, आई विल टोटली इंजॉय दैट, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं कि नहीं. यू नो, कॉल मी एट 972-235-5555. दैट इज करेक्ट. एनी वेज, दैट बींग सेड, गर्ल ग्रुप्स, बॉय ग्रुप्स, यू नो, डिफरेंट गर्ल एंड बॉय ग्रुप्स की अगर हम बात करें, सो देयर वाज इज लाइक अर्ली 2000s, लेट 90s इंडी पॉप बैंड कॉल्ड अ बैंड ऑफ बॉयज. नाउ दे आर ऑल नॉट दैट यंग एनी मोर, बट बैक देन दे वर लाइक, you know, really fine men, you know, they looked all really good and they were dancing and everything. So this is a song called Meri Neend by the group A Band of Boys. Not very innovative in terms of the name, but you know what, it's okay, the song is still nice. Enjoy.

0: मुझे तो यार ये गाना बड़ा पसंद था. आई लव द सॉन्ग. मतलब इट्स सो कैची, इट्स सो डांसी, इट्स सो फन. क्योंकि सैटरडे नाइट को भाई हमें तो थोड़ा डांस करना चाहिए, बनता है थोड़ा पार्टी शार्टी करना बनता है, राइट? एनीवेज, दिस इज द नेक्स्ट सॉन्ग एक्चुअली गोज आउट टू सफी. बट बिफोर आई प्ले द सॉन्ग, मैंने जो क्वेश्चन पहले अनाउंस किया था उसका तो मैंने आंसर बताया ही नहीं. एग्जैक्टली, उसके ओरिजिनल गाने में जो था, आई हैड प्लेड इट्स द टाइम टू डिस्को एंड देर वर थ्री सिंगर्स, बट देर वॉज ऑल्सो वन मोर फीचर्ड बैकग्राउंड वोकल्स इन दैट, विच वॉज नॉट द क्वेश्चन. एज लॉन्ग एज यू आंसर द थ्री मेन सिंगर्स यू वुड हैव बीन फाइन. बट मिस्टर सार्थक पटेल, हु एक्चुअली वन दैट प्राइज, ही आंसर्ड वसुंधरा दास एंड शान एंड के एंड लॉय मेंडोंजा. यस, लॉय इज एक्चुअली द कंपोजर ऑल्सो ऑफ दैट ट्रैक अलॉन्ग विद शंकर एंड एहसान. दे इट्स लाइक द ग्रुप, यू नो, दो थ्री पीपल ग्रुप, शंकर एहसान लॉय. आपने नाम सुना ही होगा सबका. एनीवेज, बट यस, दैट वॉज द आंसर. कंग्रेचुलेशन सार्थक पटेल जी. आई होप यू गो एंड कलेक्ट योर $10 फन पिज्जा किचन वाउचर एंड टेल अस हाउ यू एंजॉय द पिज्जा. यमी यमी. मुझे तो भूख लग रही है यार, मैंने डिनर नहीं किया अभी तक. मुझे जाना है, ये रेडियो शो खत्म करके मैं जाऊंगी. आई यू नो हैव समथिंग नाइस बिकॉज दैट्स द प्लान. एनी वेज, द नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू सफी एंड सफी रिक्वेस्टेड जिंदा बंदा फ्रॉम जवान. सो दिस वन्स फॉर यू.
1: बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो.

वाह यार, वो तो बिल्कुल एकदम सही सा गाना था, बिल्कुल हमारी थीम में, बिल्कुल सैटरडे नाइट वाइब्स हो रही है यहाँ पे. वी आर रेडी टू पार्टी, वी आर प्री गेमिंग. आर यू प्री गेमिंग? आई डोंट नो, टेल मी इफ यू आर. इफ यू आर नॉट, देन ऑल्सो यू कैन कॉल मी एंड टेल मी. एनीवेज, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस ब्यूटिफुल डांस म्यूजिक दैट आई एम जस्ट प्लेइंग फॉर यू गाइज. एंड लेट्स गो टू आर नेक्स्ट पार्टी सॉन्ग. वेल, दिस इज नॉट रियली अ पार्टी सॉन्ग, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग. आई केम अक्रॉस दिस सॉन्ग कुछ टाइम पहले और आई हैडन्ट इवन हर्ड ऑफ दिस आर्टिस्ट. दिस इज़ ए पाकिस्तानी आर्टिस्ट कॉल्ड जोई विकाजी. मैंने कभी उनका नाम नहीं सुना था, कभी मैंने उनके गाने भी नहीं सुने थे, बट ये गाना तो पता है आपको 9 साल पुराना है. एंड देन आई वॉज लाइक वाओ, दिस सॉन्ग इज़ सो कूल, आई लव दिस सॉन्ग. एंड इसका लिरिक्स का मीनिंग भी बड़ा सही है, मतलब जाने दो यार, मतलब जो भी हुआ उसको छोड़ दो. अभी कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, एक चीज़ में हम फंसे रह जाते हैं, उस पर हम सोचते रहते हैं. इफ़ यू आर एन ओवर थिंकर लाइक मी, देन आपको लगता है एक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप उसके बारे में सारे दिन सोचते हो, अरे काश मैं ऐसे करती तो ऐसा होता, काश मैं वैसे करती तो वैसा होता. यू नो, इस तरह से हम सोच रहते हैं सोच रहते हैं. कई बार यू नो यू हैव टू जस्ट लेट इट गो एंड गो विद द फ्लो, लेट द यूनिवर्स आंसर योर प्रेयर्स एंड बी लाइक कि भैया ये तुम्हारी ज़िंदगी में है नहीं, तो आगे बढ़ते जाओ. ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट स्टेप, लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ, लुक एट व्हाट्स द अदर डोर दैट्स ओपनिंग. मतलब एक दरवाज़ा, मतलब बाकी सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं ना, तो एक कोई वहाँ से कोई खिड़की खुली हुई आती है, तो आपको उस खिड़की को ढूंढना है कि कहाँ पे मैं जाऊँगी, तो मे बी दैट इज़ माई एस्केप राउट विद ऑल ऑफ दिस. बट एनी वेज, दैट बींग सेड, इन्जॉय दिस नेक्स्ट सॉन्ग एंड देन वी आर गोना गो इन टू अ ब्रेक आफ्टर दैट. एंड आई एम क्यू अनदर सॉन्ग बिफोर वी गो इन टू दैट ब्रेक, बट दिस इज़ जोई विकाजी विद जाने दो.

गाइस, दैट वाज ढिचकियां धूम धूम फ्रॉम द मूवी चश्मे बद्दूर, विच फीचर्स अली जफर, सिद्धार्थ एंड तापसी पन्नू. आई लाइक दैट सॉन्ग. मैंने ज़्यादा पहले सुना नहीं ये वाला गाना, बट आई थिंक इट्स अ लिटिल कैची. आई डोंट माइंड इट. आई एम गोना गो अहेड एंड प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग. दिस इज ऑल्सो अ रिक्वेस्ट. अनफॉर्चुनेटली मैं आपका नाम लेना भूल गई. कोई बात नहीं, आप इंजॉय करिए. दिस इज़ हम्मा हम्मा, बट ये थोड़ा सा अलग वर्जन है, बिकॉज आई लाइक दिस वर्जन बेटर. सो आई एम गोना प्ले यू व्हाट आई लाइक.

अरे वाह, ये होता है ना पार्टी सॉन्ग यू गाइस, इसको बोलते हैं हम पार्टी का मूड सेट करना। ठीक है, आपको अगर पार्टी करने का मूड है तो ये गाने आप सुनिए, आप इंजॉय करिए, हैव अ ग्रेट टाइम। एंड भाई वी आर ऑलमोस्ट टूवर्ड्स दी ऑलमोस्ट तो नहीं, खैर अभी आई एम देयर फॉर मे बी अनदर 40 मिनट्स, सो वी आई एम गोइंग टू प्ले सम रियली इनक्रेडिबल सॉन्ग्स ऑल्सो फॉर यू गाइज। आई एम गोइंग टू कीप गोइंग ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उसके पहले आप ये वाला गाना एंजॉय करिए। आई होप यू लाइक दिस वन।

एंड वी आर बैक. यस गाइस, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो मैं दोबारा बता दूं, माय नेम इज एपी रॉय, लेकिन प्यार से लोग मुझे एपी द हिप्पी भी बोलते हैं, कई लोग मिसेज एपी भी बोलते हैं. कोई बात नहीं, मिसेज तो हूं नहीं मैं अभी, इट्स मिस ओनली, बट इट्स ओके. प्यार से लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, बट यू गाइस कैन कॉल मी एपी. यस दैट इज राइट, एपी द हिप्पी. एनीवेज, हम लोग आज क्या करने वाले हैं? हम लोग आज भाई पार्टी के गाने सुनने वाले हैं, क्योंकि सैटरडे नाइट है, मेमोरियल डे वीकेंड है. आई वाज लाइक सो वेटिंग फॉर दिस मेमोरियल डे वीकेंड कि भैया कब आएगा, क्योंकि इसके पहले तक ना इतना बिजी जा रहा था मेरा पूरा महीना, लाइक होल आई मीन द मंथ ऑफ मे वॉज रिडिक्युलसली बिजी. वी आर कैचिंग अप, वी आर फिनिशिंग द सेमेस्टर. जिनको नहीं पता, वेल आई बिसाइड्स बीइंग एन आरजे एंड एंटरटेनिंग यू विद माय वॉइस एंड माय चॉइस ऑफ म्यूजिक, आई एम आल्सो ए फुल टाइम म्यूजिशियन एंड आई हैव दिस बॉलीवुड बैंड कॉल्ड डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट एंड वी प्ले लाइक अ लॉट ऑफ वेडिंग्स एंड प्राइवेट इवेंट्स एंड स्टफ ऑल ओवर डैलस. तो अगर आपको बड़े इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस चाहिए, यू नो, टू कम एंड सिंग एट योर इवेंट, यू शुड रीच आउट टू माई बैंड. You can find us on YouTube or the internet. It's called DallasBollywood.com. It's very easy to remember. But anyways, that being said, I also, jinko nahi pata, I'm also a full-time musician and I make my own songs as well. Guys, I write my own songs. That is right. So before we go into a break, hum 7 minute mein ek chote se break mein jane wale hain. I'm going to play you one of my songs. Agar aapko mere gaane pasand aaye, मेरे खुद के गाने, तो उनको ज़रूर सुनिएगा स्पॉटिफाई पे, एप्पल म्यूजिक पे, या कहीं भी आप सुन सकते हैं. यू कैन जस्ट सर्च फॉर एपी रॉय. हाउ विल यू स्पेल इट? IPPIROY. मतलब थोड़ा सेल्फ प्रमोशन तो बनता है यार, अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है फनेशिया की तरफ से, तो क्यों ना हम उसको यूज़ करें, है ना? तो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट करने की बजाय वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड लिसन टू दैट सॉन्ग. और अगर आपको मेरा ये न्यू वाला सॉन्ग पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा, और मुझे कॉल करके बोलिएगा ऑन 972-235-5555. उसके बाद मैं सिर्फ आधे घंटे और बक बक बक बक और बकवास करने वाली हूँ. इसके अलावा भी अगर आपको कोई अच्छा सा पार्टी सा गाना रिक्वेस्ट करना है, इफ़ यू आर प्री गेमिंग एंड यू आर हैविंग फन, देन डू रीच आउट टू मी, यू नो, एंड आई विल डेफिनेटली प्ले योर सॉन्ग. यू गाइज टोटली एन्जॉय द सॉन्ग.

0: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस।
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
5: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: ना सब और प्राइस
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
11: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
13: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
17: अरे भाइयों और बहनों और साथियों और सहेलियों, we are back. आप क्या कर रहे हैं? Saturday night का time है, आप तैयार कर रहे हैं कि नहीं party शादी जाने के लिए, मतलब दोस्तों के साथ hang वैंग करने के लिए? मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, अभी मेरी शिफ्ट ख़त्म होने वाली है, 9 बजे तक ही हूँ मैं आपके साथ। इफ़ यू आर जस्ट जॉइनिंग इन, माय नेम इज़ इबी रॉय, यस, एंड आई एम द न्यूएस्ट बर्डी हियर एट 104.9 FM फनेजा रेडियो। एंड और मैं, मेरी आवाज़ में जैसे आपको सुर सुनाई देता है, वैसे तो मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन हूँ, लेकिन कई बार मुझे बहुत बातें करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे ना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा अच्छा लगता है, यू नो, आई मीन मेरे दोस्त लोग मुझे कई बार आते हैं, एडवाइस लेते हैं, जैसे अभी मेरा एक दोस्त आया अक्षय बीच में, उसने मुझे पूछा यार इपी आपने इतना वेट लूज कैसे किया, आप मुझे थोड़ी फिटनेस एडवाइस दो। फिर मैंने उसको थोड़ी सी अपनी ज्ञान दी जो मेरे को जो मुझे पता था, तो मैंने बोला कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, कैलोरी डेफिसिट करना है वगैरह वगैरह। उसके अलावा मैं और भी मतलब कई लोगों में रिलेशनशिप एडवाइस देती हूँ, बट यू नो व्हाट द आयरनी इज, मेरी खुद की रिलेशनशिप नहीं बन रही यार। पिछले 10 साल से मैं ढूंढे जा रही हूँ, 10 साल तो नहीं चलो 8 साल से, पर कोई मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं, होपफुली इसी दिन आज कल परसों तरसों नरसों सरसों कभी ना कभी तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, है ना। तो तब तक के लिए हम गाने सुनेंगे, थोड़ी इन्जॉय करेंगे लाइफ, और ऊपर वाले की जब ख्वाहिश होगी या इच्छा होगी तब कोई ना कोई आ जाएगा ज़रूर सामने। एनीवेज वो सब बातें बाद में करेंगे। फॉर दोज ऑफ यू हु आर जस्ट ट्यूनिंग इन, येस दैट इज़ राइट, आई विल बी द न्यू RJ एंड आई विल बी रेगुलर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे 7 to 10 PM एंड वी विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ दीज रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक डेटिंग लाइफ, relationship problems, you know, some kind of office gossip, what's happening, what's trending on Insta, what's trending on YouTube and stuff like that. किसी के हम vlogs के बारे में बात करेंगे, कौन कॉन्स फेस्टिवल मूवी फेस्टिवल में कौन किसने क्या आउटफिट पहना वगैरह वगैरह, ऑल द टैबलॉइड गॉसिप, यू नो, बिकॉज लिसन आई एन्जॉय दैट स्टफ एंड इट इज़ वेरी जूसी एंड इट इज़ वेरी वेरी वेरी फन। तो आई नो यू ऑल्सो एन्जॉय इट, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कई बार ही, बट we all enjoy it, hai na? I love facts and these are basically some facts which are totally irrelevant. Anyways, that being said, I will play you the next song. Any Guru Randhawa fans in the house? Me too. Actually, ek main bahut sahi cheez batati hu. By profession, because I'm a professional musician, I also teach voice and singing and piano and guitar and I'm a multi-instrumentalist and I, you know, do a lot of teaching. और टीचिंग मैं पिछले 2023 से कर रही हूँ, एक्चुअली नहीं 2023 नहीं सॉरी 2013 से आई एम यू नो टीचिंग स्टूडेंट्स। और मेरी एक बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, उसका नाम है नानकी। ये मेरे US में आने से पहले, ठीक है, नानकी मेरे पास आई व्हेन शी वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड, शी सच अ स्वीट लिटिल गर्ल। और मैंने कहा अच्छा वाओ नानकी वेरी गुड, आओ चलो हम गाना शुरू करते हैं, चलो सा का रियाज करते हैं, तुम्हें क्या गाना है लाइफ में, तुम्हें तुम्हारी गोल्स क्या है, सिंगिंग गोल्स क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर आप कोई चीज़ एम कर रहे हो लाइफ में, लाइक यू वांट टू गेट बेटर एट योर क्राफ्ट एंड एवरीथिंग, यू नीड टू मतलब हैव अ क्लियर विजन कि मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे इस तरह का। क्योंकि सिंगिंग की बात करें, फाउंडेशन के अलावा जॉनर्स बहुत होती हैं, सो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल दैट यू हैव अ विजन इन माइंड, बिकॉज देन दैट काइंड ऑफ मोटिवेट्स यू टू कीप गोइंग, यू नो। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लासिकल सिंगर बनना है और आपका टीचर आपको बॉलीवुड गाने बना मतलब सुना रहा है, बोल रहा है कि बॉलीवुड गाओ, उसे कह रहा है भाई मुझे बॉलीवुड नहीं करना है, मुझे गज़ल गाना है, मुझे नहीं सुनना ये सोनू निगम के गाने, मुझे सुनना है गुलाम अली के गाने, तो फिर मतलब ही विल गेट टायर्ड एंड यू नो यू विल लूज अ क्लाइंट एंड ही विल फाइंड अनदर टीचर हु विल टीच हिम व्हाट ही वांट्स टू लर्न। सो यू ऑलवेज हैव टू एड्रेस योर क्लाइंटेल। एनीवेज, सो नान की आई मेरे पास 2013 में, शी वाज लाइक दिस लिटिल 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, यू नो। मैंने कहा ओके नान की टेल मी what do you want to sing in life, you know, let's identify your singing goals and let's figure out what do you want to do. And Nanki goes like, ma'am mujhe to halkat jawani gaana hai. And today Nanki is so good, she has like over 100,000 followers on Instagram, she's in Bombay, she's hustling out there. In a few years you will hear her voice in some film or something, I am 100% sure. Last year, she also did a track with Guru Randhawa, you know. Guru Randhawa saw her singing, you know, her doing her videos and stuff. And Guru Randhawa was like, ki, Nanki, I really like your singing. Come, let's collaborate on a song. And Nanki goes like, oh, yeah, absolutely. Nanki is not my student for the last 5 years because I moved countries and I moved over here. Actually, I moved here 8 years ago. But uske pehle maine Nanki ko sikhana chhod diya tha. But I'm so happy to see her growth and collaborating with these amazing artists and stuff. Mujhe badi khushi hoti hai and I keep sharing it on my Insta as well. But enjoy this next song. This is not Nanki's song, of course. This is Guru Randhawa's song. But there's something very interesting about this song. It sounds very, very similar. Very, very similar to one of the most catchiest tunes by Dua Lipa. If you can figure it out, call me and let me know. आई डोंट हैव अ प्राइज बट आई विल अनाउंस योर नेम कि भाई मिस्टर एक्स वाई जी या मिस ए बी सी ने ये गाना फिगर आउट कर लिया कि कौन से इंग्लिश गाने जैसा साउंड करता है. तो अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे को कॉल करके बताओ.

are back, you guys. Did you like that song? I just got a call. I just got a very interesting call. मैं आपका नाम लेना भूल गई, आपसे आपका नाम पूछना भूल गई. But anyways, अगर आपको जो इन्होंने एक्चुअली बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो पॉइंट आउट करी, जो मुझे भी कई बार रियलाइज़ नहीं होती है. कई बार हम लोग ना रेडियो पे मतलब ज़्यादा इतने फास्ट फास्ट बात करते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, यू नो, तीन घंटे तक नॉन स्टॉप एक कमरे में आप बैठ के अपने आप से ही बातें कर रहे हो, तो कई बार ना ये चीज़ें याद नहीं रहती. तो जैसे उन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ पॉइंट करी कि हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है रेडियो बोल के, ठीक है, और रेडियो वाले प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम बदल दिए हैं काफ़ी शहरों के, ठीक है, तो जैसे मद्रास का नाम हो गया चेन्नई, एंड उन्होंने सोच समझ के चेन्नई नाम रखा बिकॉज दैट वाज द ओरिजिनल नेम. वैसे ही बॉम्बे जो नाम था दैट वाज कॉइन्ड बाय द ब्रिटिश, लेकिन ओरिजिनली जो नाम था एक्चुअली इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम वन ऑफ द गॉडेसेस दैट दे यूज्ड टू वर्शिप कॉल्ड मुम्बा देवी, और उसके ऊपर उन लाइक जो लोकल्स थे वो मुंबई बोलते थे. और मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि कई बार मैं अभी मैं बातें करते करते ना मैं बॉम्बे बॉम्बे बोल रही हूँ, क्योंकि समहाउ जब आप ये मेरी थोड़ी सी पर्सनल बात है, विच इज़ डैलस में आने से पहले मैं अराउंड 2 साल मुंबई में भी रह चुकी थी. यू नो, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू सी कि अच्छा लेट्स सी द इंडस्ट्री, देखते हैं यहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसा है, कैसे काम करेंगे एंड जो भी ऑल दैट. तो आई वॉज ट्राइंग माई लक विथ लाइक यू नो जस्ट काइंड ऑफ सीइंग इट. और वहाँ पे जाके आप बिलीव नहीं करोगे, सरप्राइजिंगली सारे जो लोकल्स हैं ना, जो एटलीस्ट बैंड्रा या जिस एरिया में हम लोग काम करते थे, जैसे अंधेरी वगैरह और वर्सोवा, जो टीवी पर्सनैलिटीज़ जो भी हैं, वो लोग सब लोकली जब अपने आप में जब बातें करते थे, दे ऑल वर यूज टू सेइंग इट एज बॉम्बे. तो हमारी भी उससे आदत पड़ गई. बट एज द पर्सन हु जस्ट कॉल्ड मी अप, ही रेफर्ड कि हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें उनको एक्चुअली रियल नाम से बोलना चाहिए, जो अभी उनका करंट नाम है विच इज़ मुंबई. सो वी शुड डेफिनेटली से इट एज मुंबई. सो थैंक यू फॉर करेक्टिंग दैट. आई विल डेफिनेटली टेक योर एडवाइस. एंड मूविंग ऑन, लेट अस एंजॉय दिस नेक्स्ट सॉन्ग. आई एम स्टिल इन अ पार्टी मूड. आर यू इन अ पार्टी मूड? चलो लेट्स हैव सम फन, लेट्स एंजॉय दिस नेक्स्ट.

गाइज आप पार्टी कर रहे हैं कि नहीं? भाई मुझे तो इसके बाद जाना है, कोई मेरे दोस्तों को मैं पकड़ूंगी, कॉल करूंगी, मैंने कहा भाई करें, लेट्स हैंग, लेट्स हैव सम फन, लेट्स पार्टी, ओके, लेट्स किक सम डांस मूव्स ओवर हियर. ऑलराइट, उसके उसी से रिलेटेड आपको मैं नेक्स्ट गाना बजाती हूँ. आपके पास अपना ग्लास है ना, आप चाहे उसमें कोक क्यों ना पियो, डाइट कोक पियो, पेप्सी पियो, जो भी पियो, जूस पियो यार, पानी पी लो, मेरी तरह पानी पी लो. आई डोंट ड्रिंक बट आई ड्रिंक वाटर. सो होल्ड दैट ग्लास एंड लेट्स हैव सम फन.

अबाउट ए लॉट ऑफ रियली फन जूसी एक्साइटिंग थिंग्स. अगर आप काम से तब वापस आ रहे हैं, यू आर गोइंग टू यू नो आई डोंट नो गोइंग समवेयर, 7 से 10 बजे के बीच में लोग मुझे तो लगता है कि काम से वापस ही आ रहे होते हैं, मतलब जिनको लेट काम करना होता है. कई बार जैसे हमें लेट काम करना होता है, यू नो, तो अब ड्राइव पे हम रेडियो सुनते हैं. मेरा तो रेडियो चलता रहता है ड्राइव पे, अगर मेरी अपनी प्लेलिस्ट नहीं चल रही है तो रेडियो चलता रहता है. तो उस टाइम पे हम बातें करेंगे, थोड़ी जूसी जूसी गॉसिप करेंगे, वी विल डिस्कस सम फन स्टफ लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज लाइव्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. बट एनीवेज, आई होप यू हैव ए वंडरफुल सैटरडे नाइट. आई होप यू गेट टू इन्जॉय योर सैटरडे नाइट एंड दिस ब्यूटिफुल मेमोरियल डे वीकेंड. वेल, गो ऑन अ लिटिल ब्रेक, गो ऑन अ लिटिल पार्टी, हैव सम फन, गो समवेयर, थोड़ी आप रिलैक्स करिए. मैं तो घर जाके सोने वाली हूँ क्योंकि आई वर्कड सो हार्ड दीज लास्ट फ्यू वीक्स दैट आई नीड अ ब्रेक. मुझे तो जाके सोना है भाई, दैट इज़ माई पार्टी. कई बार मुझे ना सोने को नहीं मिलता है. एनी वेज, बट दैट बींग सेड, यू गाइज, लेट्स फिनिश दिस अप विद दिस क्लासिक पार्टी ट्यून. दिस इज़ फ्रॉम द अर्ली 2000s और मे बी 90s, लेट 90s, आई एम नॉट श्योर, बट इन्जॉय दिस ब्यूटिफुल बलीसा गुड ट्यून.

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से एट 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस
1: लाए।
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
5: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park Plano near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
6: For booth and sponsorship contact admin at ambuj.us.

ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ।

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
1: सब कुछ साफ रख सकते हो
2: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
3: क्योंकि ये कौन बोला?
2: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
4: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
5: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
6: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
4: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
6: सच में बिल्कुल घर जैसा.
4: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
9: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
3: Official tax and finance partner, AG Fintax.
2: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक

0: ही नाम है पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओगी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पनेशिया।

0: सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फनएशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। कॉल अमरीन एट 214-909-6601
1: और विजिट देयर इंस्टाग्राम अमरीन सैलून लोकेटेड एट एलन एंड फ्रिस्को।
0: अमरीन सैलून, style that moves with you.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khan Zada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

0: Club Fanasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: आई नी तेरा सूट भी आई नी तेरी साड़ी भी आई नी तेरा लहंगा तेरी ड्रेस ते तेरा कोका डिजाइनर

0: tracks on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Phonasia.
2: तेरी ये बारी सबकी तूने वाट लगवा दी लड़की है आफत कहती थी दादी।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
3: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
2: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
4: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
5: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
6: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
7: Astrology readings for guidance only and results may vary.
8: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉनस्टॉप बॉलीवुड, नॉनस्टॉप स्वैग।
1: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
2: I love it.
1: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
3: कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या?

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: playing the music you want all day, every day, only on Funasia Radio.
1: क्या बात है, क्या चीज है, पैसा? क्या बात है, क्या चीज है, पैसा? क्या बात है, क्या चीज़?

0: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up. AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल थ्री, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
3: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
4: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

बस आशिकों पे रहे कर्फ्यू।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: Allah. आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है।

0: The Magic 24/7 only on 104.9 FM.
1: दिला दे घर बना दे घर दिला दे घर
2: Oh my God, this is original.

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
1: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी।
2: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स, बिकॉज़ फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanaa Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession. Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: अरे घूट में सोया गया, अरे घूट में सोया गया, अरे घूट में सोया गया, अरे घूट में सोया गया।
1: शुपोए बादशाह
0: बिंटा रहे फ्लाई बॉय, ये हम लाइफ पे हाई बॉय, ये तू रख तेरी राय बॉय, ये

शुरू न करे पर करते हैं एंड दो थोड़े सीधे हम थोड़े थोड़े वैक हैं हम आगे बाकी सारों में लैग हैं सौ बात की बातें का हम चाहे कुछ भी ना करे बेटे उसमें भी स्वैग है।

0: ला दे, हर घूट में स्वैग है। हर घूट में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है।
1: अभी भी एक घूट बाकी है।

0: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल थ्री, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
3: Hi, I am Shahrukh Khan. You are listening to Fun Asia.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनेशन।

दूंगा दिल तेरा, लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच। बोली में थोड़ा रियान भी टच है, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
1: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
6: Chicken banana. Chicken banana?
7: Bro, banana नहीं, banana. मतलब make the chicken right.
8: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
4: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
9: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
11: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
12: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
11: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
12: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
13: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: सर, लगता है फारूक नहीं बोलेगा।
1: उसका बाप ही बोलेगा।
2: बेटा, वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में बच चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.
5: एक बेटा बच गया सायरन,

0: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं हीरोइन हूं।
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
7: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
6: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
7: सच में? बिल्कुल घर जैसा।
6: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologereeshwar.com.
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन .com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema matar. Rich, bold, no compromises.
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
13: गुडनेस इज अ ब्यूटीफुल थिंग एंड गुड बिगेट्स गुड। One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

0: रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस। Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
6: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
6: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
8: Mubarak Eid Mubarak.
9: Bazaar is hosting Grand Chandrad Super Sale Eid Expo on Tuesday, May 26th at Frisco Hall Events Center from 12 p.m. to 12 a.m. 50 plus boutiques from different states, varieties of food vendors, food trucks, kids rides, henna artists and much more. Free entry and free parking. For booth and sponsorship, call or text Grand Bazaar organizer Sharmeen Hussain at 214-592-5259. Frisco Hall, located at 121 and Independence.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

वेलकम, नमस्कार, खुश आमदीद, फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। वैसे तो मेरा और आपका साथ होता है सैटरडे एंड संडे सुबह 10 से 12, लेकिन आज एक घंटा बोनस है एज आई एम कवरिंग एक रूप। सो वेल, स्टूडियो का नंबर 9722355555। आज करेंगे हम आपके साथ कुछ मजेदार फन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर, और साथ ही सुनेंगे कुछ आपकी और कुछ मेरी पसंद के गाने। सो द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555।

Well, that was the title track, गोलमाल. एंड गोलमाल अगर नहीं करना है, अच्छे से सीधा सच्चा काम करना है, कुछ एडवाइस चाहिए रिलेटेड टू टैक्स और फाइनेंसेस, एंड वेल आपको मैं एजी फिनटैक्स के बारे में बताऊंगी. दिस पार्ट ऑफ आर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं. यस, दे आर वेरी मच ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. आप एजी फिनटैक्स को कॉल करें. द नंबर इज 4699429888 और यू कैन विजिट एजी फिनटैक्स.com.

वेल दैट वॉज उठे सबके कदम देखो राम पम पम राइट. अच्छा जनरली तो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप जाएं और कुछ खरीदें. इस ये इन्फॉर्मेशन जो है ये स्टोर ओनर्स के लिए है खास तौर पर. जी हाँ रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस के बारे में बताऊं अगर सो स्टोर ओनर्स दिस वंस फॉर यू. रवि समर किक ऑफ इज बैक. मार्क योर कैलेंडर्स फॉर जून 3rd एंड 4th. 3rd एंड 4th जून को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक. फ्रॉम 9 AM टू 5 PM. एंड दिस ईयर इट्स बिगर. द इंटायर वेयर हाउस टर्न्स इनटू अ ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस. यू कैन एक्सपेक्ट क्रेजी डील्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड फ्री गिफ्ट्स ऑल डे लॉन्ग. यू कैन मीट वेंडर्स, डिस्कवर बेस्ट सेलर्स एंड स्टॉक अप लाइक नेवर बिफोर. रवीज इम्पोर्ट वेयर हाउस इज लोकेटेड इन 11029 हैरी हाइंस बुलेवार्ड, बिल्डिंग ए, डैलस, टेक्सस 75229. वेल अगर इतनी जल्दी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ना नोट कर पाए हो तो यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल 972-235-5555.

पता है, कहते हैं कि हियरिंग जेन्युइन फ्रेज एक्टिवेट्स द सेम रिवॉर्ड सेंटर इन द ब्रेन एज रिसीविंग मनी. तो जब पैसे मिलते हैं और जो खुशी मिलती है ना, वैसी ही खुशी मिलती है इफ यू गेट जेन्युइन फ्रेज. अ सिंसियर कॉम्प्लीमेंट कैन इम्प्रूव समवन्स मूड फॉर एन एंटायर डे. तो आई वुड गिव यू अ टास्क कि भाई आज एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट किसी को जरूर दीजिए एंड किसी का दिन बना दीजिए. कहते हैं इवन प्लांट्स ग्रो बेटर व्हेन पीपल टॉक पॉजिटिवली अराउंड देम, यू नो. तो कई लोग, मैंने इनफैक्ट देखा है कि कई लोग जो गार्डनिंग का शौक रखते हैं वो अपने प्लांट्स, अपने पौधों से, फूलों से भी बातें करते हैं. एंड स्टडीज शो दैट प्लांट्स ग्रो बेटर व्हेन पीपल टॉक पॉजिटिवली अराउंड देम. है ना ये मजे की बात?

0: पता है, कहते हैं कि समटाइम्स व्हेन यू मीट समवन फॉर जस्ट 5 मिनट्स, इट जस्ट फील्स लाइक यू नोन देम फॉर एवर, एंड दैट्स कॉल्ड एन इंस्टेंट वाइब कनेक्शन. ये भी माना जाता है दैट पीपल हु लाफ एट द सेम थिंग्स यूजुअली बॉन्ड फास्टर. मतलब बनता ही है, राइट, कि अगर दोनों को एक ही बात पे हंसी आ रही है, सही वही बातें समझ में आ रही हैं, तो ऑब्वियसली यू टेंड टू बेंड बॉन्ड फास्टर. साइकोलॉजिस्ट से ह्यूमन ऑफन डिसाइड विद इन सेकेंड्स वेदर दे क्लिक विद समवन और नॉट.
1: Thank you.

0: कोई फर्क नहीं अलबत्ता दा, कोई फर्क नहीं अलबत्ता,
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता।
2: दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, और से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता।
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता।
3: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
4: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो।
10: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
13: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana, supported by major Indian non-profit organization in DAW.
5: For booth and sponsorship contact admin@ambuj.us.
14: The Dill of Dallas. Heart to heart. Fun.

ऑलराइट, देयर इज अ गिव अवे कमिंग अप फॉर यू नेक्स्ट. आपको अगला गाना सुनना है और मुझे बताना है कि इसमें जो चाइल्ड एक्टर्स, स्पेशली दो चाइल्ड एक्टर्स जो इवेंचुअली जाके बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस बने, उनका नाम क्या है. जी हाँ, हैज अ चांस टू विन कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. साथ ही साथ इंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. दे आर लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन. यू कैन विजिट chandigarhbites.com फॉर मोर डिटेल्स. तो अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले, एज हम जस्ट चिल में संडे को करते हैं आपके साथ कुछ मज़ेदार फन फैक्ट्स शेयर, राइट. तो इस फन फैक्ट के बाद प्ले करूंगी वो गाना. आपको वो गाना पहचान कर, उसमें जो दो चाइल्ड एक्टर्स हैं, तो उसमें तीन, पर जो दो चाइल्ड एक्टर्स हैं जो इवेंचुअली जाके बॉलीवुड स्टार्स बने, उनके नाम बताने हैं. सो बात में करी थी कि कुछ इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स. रॉकिंग हॉर्सेस यू नो हैव बीन एंटरटेनिंग किड्स फॉर ओवर 400 ईयर्स. कहते हैं कि ये जो रॉकिंग मोशन है, इट एक्चुअली हेल्प्स काम एंड रिलैक्स मेनी चिल्ड्रन, ऑलमोस्ट लाइक अ ललाबाई इन मोशन. बहुत से बच्चे जो हैं, दे ऑफन क्रिएट इंटायर इमेजिनरी वर्ल्ड वाइल राइडिंग अ रॉकिंग हॉर्स, यू नो. तो ये जो प्रिटेंड प्ले है, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इम्प्रूव क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो गिव अवे रखें याद, ये अगला गाना सुने और मुझे बताएं कि इस गाने में तीन बच्चे दिखे थे उस मूवी में, तो आपको उन तीनों में से दो बच्चे जो बड़े होके बॉलीवुड एक्टर्स बने, उनके नाम बताने हैं मुझे. स्टूडियो नंबर 972-235-5555.

0: ऑलराइट, वेल इस गाने से रिलेटेड था हमारा गिव अवे जो कि आ रहा था चंडीगढ़ बाइट्स एलन की तरफ से, एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस। और सवाल ये था कि आपको मुझे इस गाने में जो बच्चे दिखे थे उनमें से दो बच्चों के नाम बताने हैं जो बड़े होके बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस बने। सो हाय, यू आर लाइव ऑन एयर,
1: हाय,
0: हाउ आर यू एंड व्हाट्स योर नेम?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग ग्रेट, एंड व्हाट्स योर
1: आई एम
0: नेम?
1: गीतांजलि झा।
0: ऑल राइट गीतांजलि, तो बताइए कि है आपके पास जवाब?
1: हाँ, ये मूवी मासूम से है और जो एक्टर्स है वो जुगल हंसराज और उर्मिला मातोंडकर है।
0: ऑसम ऑसम, सो देखिए ये मूवी आपने?
1: हाँ, देखी है और बहुत प्यारी मूवी है।
0: बहुत ही प्यारी मूवी, बच्चों को दिखाई?
1: बच्चों को नहीं दिखाई पर बच्चों को ये सॉन्ग पता है और वो उनको अच्छा भी लगता है।
0: ऑसम ऑसम, वर दे लिसनिंग व्हेन आई वाज लाइक व्हेन द सॉन्ग वाज प्लेइंग? Awesome, that's wonderful. Well, great, good job. Thank you so much for participating. आपने जीत लिया ये चंडीगढ़ बाइट्स का गिव अवे। आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू व्हाइल आई एम गोना प्ले अनदर सॉन्ग रिक्वेस्ट। बहुत पहले आई थी, आई डू होप दैट ही इज स्टिल लिसनिंग क्योंकि बैक टू बैक इतनी सारी रिक्वेस्ट थी। सो आई एम गोना प्ले दिस वन एंड आई टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू।
1: श्योर, थैंक
0: ऑल राइट,
1: यू,
0: थैंक यू।
1: थैंक यू।

लेकिन फ्रॉम द मूवी धर्म करम दैट वॉज एक दिन बिक जाएगा. एंड होता है कि कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाती है, अनजाने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, यू गेट इन्वॉल्व इन अ कार या ट्रक एक्सीडेंट या कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट. तो आपको रखना है याद एक ही नाम, एंड दैट इज अटर्नी ओमार ख्वाजा, एज ही विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. यू नो इंश्योरेंस कंपनी से डील करना स्ट्रेसफुल हो सकता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन ट्रबल, राइट? अगर आप हैसल्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं वैसे ही, तो अब इंश्योरेंस कंपनी से और डील करना कैन बी स्ट्रेसफुल. सो यू कैन कॉन्टैक्ट अटर्नी ओमार ख्वाजा. उनका नंबर है 4693005046. यू डू नॉट पे अंटिल यू विन. एंड यू कैन ऑल्सो विजिट अटर्नी ओमार.com फॉर मोर डिटेल्स. दैट्स अटर्नी ओमार.com.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. AZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा।
3: कौन सा?
2: कैरेट लेन।
3: वेट, व्हाट? कैरेट लेन इंडिया वाला?
2: हाँ वही।
3: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली।
2: देखा, ढूंढ के दिया ना।
4: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को, लाइट वेट रियल डायमंड्स मेड फॉर एवरीडे। कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट।
5: भूख लगी
6: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
7: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
8: सब कुछ साफ रख सकते हो
9: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
10: क्योंकि ये कौन बोला?
9: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
11: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
12: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
13: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972।

0: आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
3: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
4: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
3: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
4: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
5: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
6: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
7: Dallas ki dhadkan 104.9 FM. Fun Asia Radio.

Well, you're listening to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, Just Chill. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. And here comes the next song. लेकिन उसके पहले आपको मैं ड्रीम होम मोर्गेज के बारे में बताना चाहूंगी, as they have been helping families achieve home ownership since 1998. They are licensed in all 50 states और उनकी जो एक्सपर्ट टीम है, it delivers stress-free tailored mortgage solutions for you. तो आप अपनी जो ये ड्रीम होम है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें विद ड्रीम होम मोर्गेज. फॉर डिटेल्स आप उन्हें कॉल करें. द नंबर इज 972-245-5626 और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com.

0: वेल दीवाने तो डेफिनेटली दीवाने हैं, एंड बहुत से लिसनर्स हैं जो अनामिका के दीवाने हैं, एंड वी डू हैव अ रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम श्रेया. श्रेया, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड हियर इज द सॉन्ग दैट यू वॉन्टेड टू लिसन टू. एंजॉय.
1: Black is black. Black is black.

चलिए आपको मैं Page 3 Eatery के बारे में भी बता दूं, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, संडे है और कहीं जाने का अगर मन है तो आपको सजेस्ट कर सकती हूँ मैं Page 3 Eatery. यू नो डैलस इज़ गॉट अ न्यू फ्लेवर एट हब 121 Page 3 Eatery, वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. बहुत से फ्यूजन फूड मिलेंगे आपको वहाँ, कबाब्स, चाट्स, फ्यूजन बाइट्स, मॉक टेल्स, यू नेम इट, राइट? सो परफेक्ट फॉर फूडीज, फॉर डेट्स, फॉर फ्लेवर चेजर्स, लंच, डिनर, चाय, जो भी पीना है, खाना है. विजिट Page 3 Eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स. दैट्स Page 3 Eatery.com.

वेल दैट वॉज दिल ते छुरियां चलाइया बाय दलेर मेहंदी. एंड यस, आपको बताऊं दैट दिस पार्ट ऑफ आर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस. ये आपको ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं, दे आर वेरी एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. आप एजी फिनटेक्स को कॉल करें, द नंबर इज 4699429888 और विजिट agfintechs.com.

0: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
1: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi, from taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
3: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
4: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी।
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
14: Arey yaar, Dallas mein Punjab?
0: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
6: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
15: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Pan Asia Radio.
16: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेशिया रेडियो।

ऑलराइट मारो जी, अभी नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पूछना है आपसे गिव अवे का एक सवाल। जी हाँ, फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से आपको मिलेगा $10 का गिफ्ट कार्ड अगर आप जवाब देंगे मेरे इस सवाल का। तो मैं अभी एक गाना प्ले करूँगी, उस गाने को पहचान कर आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन सी मॉडल दिखाई गई थी, लाइक विच मॉडल वॉज यू नो कास्ट इन दिस वीडियो। एंड नॉट जस्ट उस मॉडल का नाम बताना है, आपको मुझे उनके हस्बैंड का नाम भी बताना है। सो अगला गाना सुनेंगे आप मुझे बताएंगे कि इस गाने में कौन सी मॉडल एक्ट्रेस आपको दिखी, एंड उनका नाम बताना है और उनके हस्बैंड का भी नाम बताना है। एंड आपको मिलेगा फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से एक $10 का गिफ्ट कार्ड। वेल, फन पिज़्ज़ा किचन आप जाएंगे बिकॉज इफ यू आर क्रेविंग समथिंग चीजी विद अ देसी ट्विस्ट, यू नीड टू हेड टू पान फन पिज़्ज़ा किचन वेयर फ्लेवर मीट्स फायर। जी हाँ, वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देयर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज़्ज़ा किचन। फॉर मोर डिटेल्स विजिट funpizzakitchen.com। एंड द गिव अवे क्वेश्चन वंस अगेन इज, लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, टेल मी विच मॉडल इज इन दिस वीडियो, एंड नॉट जस्ट द मॉडल्स नेम बट ऑल्सो हर हजबेंड्स नेम एज वेल। स्टूडियो नंबर 9722355555।

0: जी हाँ, गला गोरियां दे विच टोए, टोए का मतलब समझते हैं ना, जो डिम्पल पड़ता है गालों पे, दैट्स कॉल्ड टोए। एंड मैंने पूछा था आपसे गिव अवे सवाल, फन पिज्जा किचन की तरफ से मिलेगा आपको $10 गिफ्ट कार्ड अगर आप मुझे बताएंगे कि इस वाले गाने में जो मॉडल थी उनका नाम और उनके हस्बैंड का नाम। एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस। हाय, यू आर लाइव ऑन एयर,
1: Hi,
0: हाउ आर यू
1: I'm good, thank you.
0: एंड व्हाट्स योर नेम?
1: My name is Akshi.
0: अक्षी। अक्षी, व्हाट डज दैट मीन? आई हैव नेवर हर्ड दिस नेम बिफोर।
1: आई थिंक इट मीन्स आईज, दैट्स व्हाट माय मॉम सेज,
0: ओह वाओ,
1: तो
0: अच्छा
1: वही होगा.
0: अक्ष, ओह इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल नेम। सो अक्षी बताइए, है आपके पास इस सवाल का जवाब?
1: हाँ, वो मॉडल का नाम है मारिया घरोटी,
0: या
1: आई थिंक
0: मारिया
1: सो,
0: गोरोटी।
1: एंड उनके हस्बैंड का नाम अर्शद वासी.
0: आशा, वाह वाह वाह, क्या बात है अक्षी, वेल डन, वेरी वेल प्लेड, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आपको मिलता है ये $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर, टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू, एंड वाइल आई एम गोना प्ले अर्शद वारसी का एक गाना। आई थिंक ये वो गाना है जिससे वो एक्चुअली मशहूर हुए थे, आई दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर। सो आई एम गोना प्ले दैट वन फॉर द लिसनर्स एंड आई टेक यू ऑफ एयर फॉर सम डिटेल्स। ओके,
1: Yes, sure.
0: ऑल राइट,
1: Thank you,
0: हाँ
1: Yippee.
0: ठीक है।

That was taken from the movie तेरे मेरे सपने। एंड मुझे याद है मेरा एक कजन का बेटा था और र को ड बोलता था, तो वो बोलता टेढ़े मेढ़े नहीं, हाँ टेढ़े मेढ़े सपने। सो दैट वॉज रियली क्यूट। वेल द नेक्स्ट सॉन्ग इज अ सॉन्ग रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम मयंक। मयंक थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।

Taken from the movie बड़े मियाँ छोटे मियाँ, that was मखना। अच्छा मियाँ, ये भी हो जाता है कभी कभी कि ना चाहते हुए भी आप कोई ट्रक एक्सीडेंट में या कार एक्सीडेंट में फंस जाते हैं, राइट? यू गेट इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट, तो आपको रखना है नाम एक याद, एंड दैट इज़ अटर्नी ओमर ख्वाजा, क्योंकि ना केवल ही आपका केस फाइट करेंगे, ही विल हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व, साथ ही साथ यू डू नॉट पे अनटिल यू विन। सो एक फ्री कंसल्टेशन के लिए आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 4693005046, और यू कैन विजिट attorneyomar.com, दैट्स attorneyomar.com।

Well, that was a shararat taken from Dhurandhar. This is Madhulika, lekar aayi hoon Just Chill, jahan karte hain hum, as the name suggest, Just Chill. Well, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555. अच्छा चलिए, जस्ट फॉर फन, देयर इज नो गिव अवे, यहाँ कोई गिव अवे नहीं है, बट जस्ट फॉर फन मैं एक गाने का इंग्लिश ट्रांसलेशन करूंगी और आपको मुझे कॉल करके बताना है कि मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ. So the translation goes something like this, that she shoots bullets from her eyes. This girl is a total wonder machine. So tell me which song I'm talking about. 972-235-5555.

0: अल्लाह वाज टेकन फ्रॉम द मूवी चमेली. एंड जस्ट फॉर फन मैंने पूछा था कि मैं एक गाने का इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि ये गाना कौन सा है. सो द ट्रांसलेशन वेंट समथिंग लाइक शी शूट्स बुलेट्स फ्रॉम हर आईज, दिस गर्ल इज अ टोटल वंडर मशीन. एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर, कैन यू हियर अस? ऑलराइट, लुक्स लाइक नॉट. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, बताइए कि मैं कौन से गाने की बात कर रही थी.
1: अखियों से गोली मारे.
0: Awesome. Are you a गोविंदा फैन? Awesome. तो अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि गोविंदा का आपको सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है, विच वन वुड दैट बी?
1: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए. वीकेंड है.
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. सो ऑसम, चलिए आपने बिल्कुल सही गाना गेस्ट किया है. सो आई एम गोना प्ले द सॉन्ग दैट यू हैव गेस्ट, क्योंकि वो डिस्को वाला तो चलिए वो भी मैं प्ले करूंगी इसके बाद. ऑलराइट,
1: कोई बात. थैंक यू
0: फॉर कॉलिंग. हैव अ गुड वन. यू टू. बाय बाय
1: बाय.

Well, that was अखियों से गोली मारे एंड द नेक्स्ट सॉन्ग ऑल्सो विल बी अ गोविंदा नंबर. लेकिन उसके पहले आपको मैं बताना चाहूंगी माई टाइम इक्विटी के बारे में. इफ यू नीड फाइनेंशियल गाइडेंस, कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको, देन माई टाइम इक्विटी लेड बाय CPA सुधीर पाए ऑफर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल इस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज वेल. आप विजिट करें mytimeequity.com और यू कैन कॉल 469-702-1272. The number once again for My Time Equity is 469-702-1272. Achha, ek aur gana, just for fun, you have to guess which song I'm talking about. Bahut hi aasan hai, I'm sure aap sab is gaane ko guess kar payenge. Studio ka number 972-235-5555. Tell me which song I'm talking about. In the window opposite mine lives a piece of the moon. जी हाँ, तो बताइए कि मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ. 972-235-5555. इन द विंडो ऑपोजिट माइन लिव्स अ पीस ऑफ द मून.

0: हाँ, तो मैंने पूछा था कि जस्ट फॉर फन आप मुझे गेस करके बताएं। वैसे बड़ा आसान सा था ये सवाल कि मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ विद दिस एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, विच वॉज इन द विंडो ऑपोजिट माइन लिव्स अ पीस ऑफ द मून। हाई, वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट्स योर नेम?
1: गुनगुन।
0: ऑलराइट गुनगुन, तो बताइए कि कौन से गाने की बात हो रही है?
1: ये था मेरे सामने वाली खिड़की में।
0: ऑसम, बिल्कुल सही। गुनगुन, सो हैव यू सीन दिस मूवी?
1: यस।
0: ऑसम, एंड कितनी बार देखी? मैंने तो पता नहीं कितनी बार देखी है, शायद मेरे को डायलॉग डायलॉग याद होगा।
1: हाँ, मैंने शायद 2-3 बार देखी है।
0: ऑसम। सो गुनगुन, इज अ सॉन्ग रिक्वेस्ट दैट आई कैन प्ले फॉर यू?
1: हाँ, कैन यू प्ले सोनी दे नखरे?
0: श्योर। सो गुनगुन, आई एम
1: गोना प्ले गोविंदा के गाने चल रहे थे तो व्हाई नॉट।
0: ऑफ कोर्स, सो गोविंदा के गानों का मैं आपको रिक्वेस्ट पक्का लेती हूँ, लेकिन अभी जो मैं मेरे सामने वाली खिड़की प्ले करूंगी एंड आफ्टर दैट आई विल गो बैक टू योर गोविंदा रिक्वेस्ट।
1: Perfect. Thank you. We'll be
0: awesome.
1: listening to it.
0: Thank you. Thank you for tuning in. Bye-bye.
1: Thank you. Bye-bye.

0: डोंट टच।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
6: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
5: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
7: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स, बिकॉज़ फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रिफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन .com इज पावर्ड by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m. Join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana, supported by major Indian non-profit organization in DFW.
13: For booth and sponsorship contact admin at ambuj.us.
14: Tracks that put you on the right track.

0: Well, that was a shaky shaky. This is Madhulika. लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम as the name suggest, just chill. स्टूडियो का नंबर रखें याद 9722355555. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. एंड जस्ट फॉर फन आई एम आस्किंग यू सम ट्रांसलेटेड सॉन्ग्स. बेसिकली आपको गेस करना है उस गाने को जिसका कि मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बता रही हूँ. एंड यू हैव टू गिव मी अ कॉल एंड टेल मी विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. तो अगला ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है दैट लेट पीपल कीप सेइंग व्हाटएवर दे वांट नो मैटर हाउ क्रेजी दे कॉल अस. बताइए मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ. आई रिपीट, लेट पीपल कीप सेइंग व्हाटएवर दे वांट नो मैटर हाउ क्रेजी दे कॉल अस. अगर आप समझ गए हैं कि मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ देन डू गिव मी अ कॉल. हाय, यू लाइव ऑन एयर. सो बताइए मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ.
1: मेरे हस्बैंड ने बोला कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना.
0: नहीं नहीं नहीं, ये गाना नहीं है.
1: ओके,
0: ये गाना नहीं है. लाइक ट्राई अगेन, लेट पीपल कीप सेइंग व्हाटएवर दे वांट नो मैटर हाउ क्रेजी दे कॉल अस. एंड अगर मैं अगला लाइन आपको बताऊंगी तो शायद आप समझ जाएंगे कि दिस वर्ल्ड लाइज बीनीथ आवर फीट. सो लेट पीपल कीप सेइंग व्हाटएवर दे वांट no matter how crazy they call us, this world lies beneath our feet.
1: Oh no, I can't. I don't know.
0: No worries. All right. I'll call you back. Thank you so much for tuning in.
1: Yeah.
0: All right. Hi, you're live on air.
2: Hello.
0: Hi.
2: Hi. Yes. So the name of the song is Koi Kahe Kehtaar.
0: Kya baat hai. Wow, wow, wow, wow. What's your name?
2: I'm Manvi.
0: All right, Manvi, very well played. बिल्कुल सही जवाब. The song I was talking about is कोई कहे कहता रहे भाई. So thank you so much, Manvi. Have you seen this movie? Well, I'm sure you have.
2: Yes, yes, I've watched the movie.
0: Are you an Aamir Khan fan or a Preeti Zinta fan, or both?
2: Preeti Zinta fan.
0: Me too. Actually, I'm both. I'm both Aamir Khan and Preeti Zinta fan. So thank you so much for calling in, and I'm gonna play this song for you. Thank you.
2: Yes. Thank you.
0: Thank you. Bye-bye.
2: Bye.

चलिए मैं आपके लिए एक और तराना ट्रांसलेट करके लाई हूँ. थोड़ा सा टफ किया है मैंने, क्योंकि मुझे लगा बड़े आसान आसान सवाल पूछ रही हूँ. तो लेट्स सी इफ यू कैन गेस दिस सॉन्ग. सो इस गाने का ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है कि अभी ये थोड़ा सोच के बताऊंगी कि भाई बहुत फेमस गाना है ये. सो द सॉन्ग गोज समथिंग लाइक दिस. आई डोंट नो व्हाट एंटर्ड माय हार्ट. I have drunk the cup of love. I have truly lived. I have come alive. तो बताइए मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ. सो अगेन दिस इज जस्ट फॉर फन. वी आर आस्किंग यू अ ट्रांसलेटेड सॉन्ग. बेसिकली बॉलीवुड का गाना है, काफ़ी फेमस गाना है, लेकिन मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बताया है. सो यू हैव टू गिव मी अ कॉल 972-235-5555 एंड टेल मी विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड द ट्रांसलेशन फॉर यू वन मोर टाइम, थोड़ा सा टफ है, इज आई डोंट नो वॉट एंटर्ड माई हार्ट. I have drunk the cup of love. I have truly lived. I have come alive. So tell me which song I'm talking about.

0: वेल, आप तो बहुत जल्दी समझ गए हैं इस ट्रांसलेशन को. जी हाँ, ट्रांसलेशन वन मोर टाइम इज, आई डोंट नो वॉट एंटर्ड माई हार्ट, आई हैव ड्रंक द कप ऑफ लव, आई हैव ट्रूली लिव्ड, आई हैव कम अलाइव. एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय, आई एम सुनैना.
0: हाय सुनैना, तो बताइए कौन से गाने की बात हो रही है?
1: मैं रमता जोगी.
0: क्या
1: मैं पी
0: बात
1: आया,
0: है.
1: मैं पी आया.
0: ऑलराइट, तो सुनैना, देखी है आपने ये मूवी?
1: यस
0: एंड आई
1: मैम.
0: लव दिस मूवी, क्योंकि स्टोरी तो अच्छी थी ही, बट साथ ही साथ आई थिंक ईच एंड एवरी सॉन्ग ऑफ दिस मूवी वॉज सो गुड, है ना?
1: हाँ
0: टोटली टोटली. सो वेल, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड फॉर प्लेइंग विद हियर, यू नो, जस्ट फॉर फन. एंड इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर?
1: No, thank you.
0: All right, Sunaina. So I'm going to play the Ramta Jogi song for our listeners. Thank you once again for participating.
1: Yeah,
0: Take
1: thank you.
0: care. Bye bye.

इस घुंघरू की आवाज के साथ और संगीत की धुन के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है इस सेगमेंट में जो मैं प्रस्तुत करी हूँ नीलम आपके लिए। एक से दो के बीच में होता है आपका हमारा ये म्यूजिकल साथ। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर गाने होते हैं फिल्मी से शुरुआत बिल्कुल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ते हैं गैर फिल्मी गानों की तरफ। सीरीज की बात हो, वेब सीरीज की बात हो, पाकिस्तानी ड्रामाज, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड ऐसे बहुत सारी कुछ कलाकारों की बातें जो आप बार बार नहीं सुनते फिल्मों में। तो बने रहिए हमारे साथ इस म्यूजिकल मुलाकात में। जी बिल्कुल, कुछ गाने आपके पसंद के होंगे ये मुझे बिल्कुल यकीन है। हमारी छोटी सी कोशिश को सराहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभी से ही कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी पसंद को पसंद करने के लिए। जी हाँ, कुछ गाने जो हम शायद हो सकता है कि आपने फिल्मी गाने हो लेकिन फिर भी बार बार ना सुने हो, आपकी टिपिकल प्लेलिस्ट में ना हो, लेकिन ऐसे कुछ सुरीले गाने जिसकी मौसीकी बहुत खूबसूरत हो, जिसके संगीत में, जिसके हर लय में, हर ताल में कुछ बात हो, ऐसे गाने मैं प्रस्तुत करती हूँ आपके लिए ऑन 104.9 FM फनीश या एवरी वीकेंड।

रहूं मैं चुप क्यों, बातों नहीं मेरी खामोशी है। जी हाँ, कितनी खूबसूरत से ये बात आपने सुनी। और ये जो गाने के बोल थे वो लिखे गए थे अन्विता दत्त ने, और उसके जो संगीतकार थे वो थे अनुपम रॉय। और ये जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी, तेरे ही लब की खामोशी है, और ये आवाज़ थी ईशान मित्रा की। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हालांकि मैं मुंबई की हूँ एंड आई हैव ग्रोन अप इन मुंबई, लेकिन जब संगीत की, मुझे भी संगीत से प्यार है जैसे ही आपको भी प्यार है, थोड़ा बहुत मैं भी गा लेती हूँ, सीखी हुई भी हूँ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बांग्ला पीपल, व्हेन इट कम्स टू बांग्ला कम्युनिटी, मुझे आई रियली रियली हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के भी कई संगीतकार से लेके, गीतकार से लेके, गायक कलाकार, एंड आई थिंक कुछ है उस मिट्टी में, उस पानी में, कि इतनी खूबसूरती से संगीत निखरता है, इतनी खूबसूरती से गायक आते हैं, वहाँ से संगीतकार आते हैं, चाहे आप सलीला की बात कर दें, आर डी बर्मन साहब, पंचमदा, एंड इट्स लाइक द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। बस यही कुछ बातें आप ही के साथ संगीत की, कुछ फिल्मी गाने, कुछ नहीं लेकिन ज़्यादा गैर फिल्मी गाने प्रस्तुत करती हूँ मैं नीलम ऑन दिस सेगमेंट एवरी संडे।

बहुत ही खूबसूरत ये गीत, सांसों की माला में सिमरू मैं तेरा नाम। कितने कितने अलग अलग सिंगर्स ने, कंपोजर्स ने अपनी स्टाइल में, अपनी शैली में ये गीत हमें सुनवाया है। एंड हर बार किसी की भी आवाज़ हो, किसी की भी धुन हो, लेकिन इस गाने के बोल में कुछ अलग ही एक कशिश है, एक दर्द है जो कोई भी आवाज़ हो लेकिन दिल को छू जाती है। बस ऐसे ही कुछ आवाज़ें आपके लिए लाई हूँ। और इतने सारे कॉल्स हमारे कलकत्ता के लिसनर्स के, जी बिल्कुल, अगर आप कलकत्ता के हैं, बंगाली बोलते हैं, बांग्ला कम्युनिटी से, तो मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगी, इफ़ यू इन केस इफ़ यू हैव मिस्ड इट, यू नो आई वाज प्लेइंग द फर्स्ट सॉन्ग और मैं ये कहना चाहती थी कि कुछ है, कुछ अलग ही बात है उस मिट्टी में, उस पानी में, कि इतने अच्छे अच्छे संगीतकार, इतने अच्छे अच्छे कंपोजर्स, गीतकार तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ऑफकोर्स गायक और गायिका हमें मिली है उस धरती से। तो ऑन दैट नोट, चलिए एक जोड़ी जो मुझे याद आ गई, कंपोजर्स की ही मैं बात कर रही हूँ, और कई दफ़ा मैंने उस कंपोज़र का जिक्र भी किया है, उनके गाने भी आपको सुनवाए हैं। नाउ इनकी इनके जो नाम है वो है सौरेंद्र और सौम्यजित। सौरेंद्र और सौम्यजित भाई नहीं है, दोस्त है। एक है पियानो वादक और एक है गायक, लेकिन दोनों ने सोचा कि कुछ किया जाए। दे बोथ आर फ्रॉम कलकत्ता, और क्या किया जाए, कुछ नया किया जाए। सो इन 2010 में इन दोनों ने मिलकर कोलकाता में ही वर्ल्ड म्यूजिक डे कॉन्सर्ट की शुरुआत कर ली थी, जो आज मैं मानती हूँ राइट आफ्टर 15 ईयर्स, राइट ऑलमोस्ट आफ्टर 15 ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सर्ट एवर। क्योंकि इसमें अच्छी बात यह है, अच्छी और सबसे बड़ी अनोखी बात यह है कि दे हैव मोर देन 600, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, मोर देन 600 ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स। उसी के साथ दे नेवर हैव वन और टू सिंगर्स ऑन द स्टेज। जब भी उनकी वर्ल्ड म्यूजिक कॉन्सर्ट होती है, एटलीस्ट मिनिमम आपको 30-40 सिंगर्स मिलेंगे ऑन द स्टेज। सो दे डू ट्राई, यू नो दे डू ट्राई अ लॉट कि अच्छे अच्छे दिग्गज महारथी एक साथ आकर गाए, एंड इट्स ऑलवेज अ लाइव कॉन्सर्ट, जिसके मैंने बहुत सारे गाने आपको सुनवाए हैं। तो चलिए ये गीत भी आपको सुनवा लेती हूँ फ्रॉम देयर वर्ल्ड म्यूजिक कॉन्सर्ट डे। और वंस अगेन इट इज़ सौरेंद्र एंड सौम्यजित, जो बहुत ही अच्छी प्रतिभा लाते हैं ऑन द स्टेज, अलॉन्ग विद दैट मोर देन 600 इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स ऑन द स्टेज लाइव। दैट इज़ वर्ल्ड म्यूजिक डे।

क्या बात है, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। प्रतिभा सिंह की आवाज में वर्ल्ड म्यूजिक कॉन्सर्ट जो थी उससे आपने सुनी ये प्रस्तुति। एंड एज आई सेड, देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स लाइव ऑन द स्टेज अलॉन्ग विथ ऑल दिस टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड सिंगर्स। और बस यही मेरी कोशिश होती है दोस्तों कि जब हम संगीत की बात करें, संगीत जरूरी नहीं कि 70s के गानों में ही अच्छा था या 80s के गानों में या 90s के गानों में। संगीत हर जगह होता है, फिल्मी गाने में भी होता है और गैर गानों संगीत गैर फिल्मी गानों में भी होता है। तो बस ऐसे ही कुछ संगीत की बातें और बहुत ही खूबसूरत गाने आपके लिए मैं प्रस्तुत करती रहूंगी टिल 2 PM लाइक एवरी संडे। चलिए, वक्त हो चुका है आपके लंच का, है ना। आपने लंच अगर नहीं बनाया, इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, राइट। समटाइम यू नो लॉन्ग वीकेंड इज लाइक अ ब्लेसिंग, स्पेशली जब व्हेन इट इज ऑन मंडे, क्योंकि लगता है कि हर वीक मंडे ऑफ होना चाहिए। क्यों, आप क्या कहते हैं, राइट। वी शुड जस्ट डू ट्यूजडे टू फ्राइडे, लेकिन फिर क्या होगा पता है, व्हेन वी डू ट्यूजडे टू फ्राइडे, हम अक्सर मंडे रात को हम रोना शुरू कर देंगे इंस्टेड ऑफ संडे नाइट। सो खैर, यही है लाइफ साइकिल, कभी ना कभी तो हमें जाना ही होता है, कितने देर। एंड यू नो इवन व्हेन वी हैव लेट्स से लॉन्ग वेकेशन, तब भी बुरा लगता है, राइट। लगता है कि अरे यार बहुत हो चुका, चलिए अब वक्त हो चुका है कि वी शुड स्टार्ट वर्किंग समवेयर समथिंग टू। ये सारी बातें होती रहेगी, लेकिन लंच की भी बातें कर ले। अगर आपको लंच पे जाना है, आई एम गिविंग यू ग्रेट ग्रेट रिकमेंडेशन, इसका नाम है तंदूरी फ्लेम। कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन गार्डन। अगर आप स्पाइस लवर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रिच करीज है, तंदूरी प्लेटर्स एंड ऑल योर नॉर्थ इंडियन फ्लेवर्स, जी हाँ फेवरेट्स आपके हैं। और उसके साथ कुछ घर की बात होगी। अक्सर हम जब बाहर खाते हैं ना, हमें लगता है कि यार वो घर जैसा खाना नहीं है, बहुत सारे मसाले हैं, ये है वो है, लेकिन उसमें कुछ घर की बात भी होगी। वंस अगेन, दैट इज तंदूरी फ्लेम्स एंड दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड। कहीं मत जाएगा, आपका और हमारा साथ रहता है यहाँ पे टिल 2 PM। और भी कुछ बातें बाकी है, संगीत की बातें बाकी है कुछ, और सीरीज की और पाकिस्तानी ड्रामास की भी बातें करेंगे ऑन 104.9 FM।

दानिश तैमूर जी, हाँ, आपके बहुत ही पसंदीदा जो कलाकार हैं, पाकिस्तानी ड्रामा के आर्टिस्ट, लीड एक्टर आई वुड से, उन पे फिल्म आया था गीत, और आप ही की पसंद पे सुना आपने ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा गहरा गीत इन द वॉइस ऑफ राहत फतेह अली खान साहब। अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं और बहुत सारे रिकमेंडेशन सो हमारे लिसनर्स ही हमें देते हैं, जो गाने अच्छे अच्छे वो रिकमेंड करते हैं मुझे, जो मैं सुनती हूँ मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलिए, मैंने नहीं देखी ये सीरीज़, ये ड्रामा नहीं देखा, मैं देख लेती हूँ। ऑन दैट नोट, अब एक नई फिल्म आ रही है, वेब सीरीज़ की तो बातें हम करेंगे, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ, OTT रिलीज़ की, तो जिसमें अश्विनी अय्यर तिवारी, इफ यू रिमेंबर हर, जी हाँ, शी इज़ अ ग्रेट फीमेल डायरेक्टर, तो उनके डायरेक्शन में एक फिल्म बन रही है, कोर्टरूम थ्रिलर होगी, एंड कौन नज़र आएगा उसमें? नज़र आएगी सोनाक्षी सिन्हा, और उनके साथ होंगे आशुतोष गोवारिकर, जी हाँ, जो एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर है, लेकिन इस फिल्म में एज अ हीरो, एज अ नॉट हीरो लेकिन स्टिल एज एन एक्टर वो नज़र आएंगे, अलॉन्ग विथ सोनाक्षी सिन्हा, और उसका नाम है बिल्कुल सिस्टम। OTT रिलीज़ है ये, इट्स नॉट द थिएट्रिकल रिलीज़, इट इज़ OTT रिलीज़, जिसमें होगी सोनाक्षी सिन्हा, एंड इट इज़ कॉल्ड सिस्टम। तो अगर आप बिल्कुल मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ नीलम, आपके साथ कुछ गैर फिल्मी गाने, गैर फिल्मी बातें, टिल 2 PM।

104.9 FM फनीशा, कुछ आपके पसंद के, जी हाँ आप ही के पसंद के, हम आपको गैर फिल्मी गाने सुनवाते हैं कुछ प्राइवेट एल्बम से। और मैं हूँ नीलम आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड्स। बस कोशिश यही होती है दोस्तों कि फिल्मी गाने तो हम अक्सर सुनते हैं, बहुत सारे, इवन इन माई सेगमेंट व्हेन आई डू सैटरडेज शो, मैं आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ बॉलीवुड के गाने, जहाँ पर होते हैं थीम बेस्ड गाने की विषय पे बहुत सारी बातें होती है, किसी शब्द पर आधारित गाने होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आज के दिन जो एक घंटा, सिर्फ एक घंटा, जी हाँ एक से दो के बीच में होता है ये साथ, लेकिन जो भी वक्त है आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ कुछ गैर फिल्मी संगीत, तो बहुत सुनहरी बातें और कुछ ऐसे सुरीले गाने ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

और महफिल किसे कहते हैं पता है आपको, संगीत की महफिल, कि आप एक गाना सुन रहे हैं जो बैठक होती है संगीत की लाइव, और माहौल बन जाता है, चलिए ये भी गा लेते हैं, राइट? आप अगर आप भी संगीत में थोड़ी बहुत जैमिंग सेशंस करते होगे, बैठक में बैठते होगे, तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि एक गाने की जब बात निकलती है, बात निकली तो दूर तलक जाती है, तो अगर एक गाना छेड़ गया दूसरा याद आता है, तीसरा। सिमिलरली हमारे एक लिसनर ने कहा कि भाई आपने हम्मा हम्मा तो सुनवाया नहीं। मैंने कहा हम्मा हम्मा तो गाना फिल्मी है, तो उनको याद आ गया ये गीत, क्योंकि मारिया को याद किया तो रेमो फर्नांडिस को याद करना ही बनता है। तो आई कुडंट फाइंड एग्जैक्टली इन हिज वॉइस, बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो डन अ प्राइवेट रेंडिशन अबाउट हिज ओन सॉन्ग विदाउट फिल्मी वर्जन। लेकिन खैर, मुझे एक और वर्जन मिला है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि देखिए, बात निकलती है तो दूर तलक जाती है, 104.9 FM।

कुछ लाइव कॉन्सर्ट्स, कुछ प्राइवेट एल्बम्स, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, सूफी स्कोर्स एंड सूफी एल्बम्स, ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो फिल्मों में नहीं होती। जी हाँ, ये गाने फिल्मों में नहीं होते जो हम आपके लिए लाते हैं ऑन संडेज 1 to 2 PM ऑन 104.9 FM। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी AG Fintechs का। दिस पार्ट ऑफ अवर शो इज ब्रॉट यू बाय AG Fintechs एंड द नंबर इज 4699429888 और यू कैन विजिट agfintechs.com। बिजनेस हो या लाइव इंडिविजुअल्स, बिल्कुल दोनों की मदद कर सकते हैं। एंड अगर आपकी भी कुछ मदद आपको चाहिए टैक्स के लिए क्योंकि, तो बिल्कुल उनको कॉल ज़रूर कीजिएगा। दे आर वेरी एफिशिएंट एंड ऑल्सो वेरी ट्रस्टेड। इट इज़ AG Fintechs। वंस अगेन, इट इज़ agfintechs.com।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
4: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
11: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.
1: क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: लैपटॉप, चार्जर, कॉफी, फोन, उफ, ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
3: एग्जैक्टली. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
2: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
3: हाँ, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
2: कैसे?
3: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन, हर ओकेजन को सूट करे.
2: ओह, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
3: या कैरेटली इन काइंड.
4: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product, now open in Frisco.
5: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Hold your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
6: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो.
9: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
13: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
6: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
5: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
4: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
8: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया।
12: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m, join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization, NDAW.
13: For booth and sponsorship contact, admin@ambuj.us.

0: Oh, baby.
1: Variety is the spice of our station. Yeah, 104.9 FM.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: सब कुछ साफ रख सकते हो,
3: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
4: क्योंकि ये कौन बोला?
3: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
5: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500।
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
11: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां,
12: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। Mention Phonasia and get 10% off on your hairstyle service. Call Amreen at 214-909-6601.
13: Or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
12: Amreen Salon. Style that moves with you.
14: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
15: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
7: ओ हाँ, ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं, फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर। विजिट श्रीकृष्णा.com। यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
9: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
8: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
9: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
8: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
9: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
8: नंबर बोल जल्दी।
9: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
10: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
11: बिग अचीवमेंट्स डिजर्व अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशंस। होस्ट योर किड्स ग्रेजुएशन पार्टी एट द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को, वेयर ग्रेट फूड मीट्स ग्रेट मेमोरीज। एंड इफ यू वांट टू होस्ट द पार्टी एट योर प्लेस, नो वरीज, यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फॉर केटरिंग सर्विसेज ओनली। Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings, everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge, you celebrate, flavor hum sambhal lenge.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai, profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
15: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

The riff back. Swag se karenge sabka swagat.

0: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGPT। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
0: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो।
9: चिकन बनाना?
10: ब्रो बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
11: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
12: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
14: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
13: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
14: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
5: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
15: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: हाँ भाई सेठी।
2: हाँ जी मनी पाजी।
1: पहुंच गए हैं?
2: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, घर तो बड़ा सही है, इत्थे तो पार्टी करनी बनती है।
1: ओ पार्टी दी कसरत है तेनू, हाले पार्टी करदा दे है तू।
3: पाजी उस गोरे से गर्मी के बाद एक बार भी यहाँ आए हो?
1: हो गए बहुत साल, हो गए दादी नू मिलन आया जी एक बारी।
2: पाजी तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
1: तू लगता है तू पैग लाए होया।
4: तू इधर कर, तू सो जा, आराम कर।
2: नहीं पाजी, एक ही बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती, पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
4: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा,
1: मेरी फ्लाइट है, तू सो जा।
2: पर दादी

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
8: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: माय टाइम इक्विरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
12: सब कुछ साफ रख सकते हो,
13: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
14: क्योंकि ये कौन बोला?
13: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
15: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500।
16: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682-346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
17: Astrology readings for guidance only and results may vary.
18: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
19: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US. 104.9 FM, Fun Asia Radio.
20: Number one hit station.
21: Yay! Yeah!

पार्टी करो कहना चुनी मानते जिने के दिन होते हैं बस चार इंसान के शर्माना और घबराना ये दोनों चीजें छोड़ दो रूल्स और डांस फ्लोर ये दोनों चीजें तोड़ दो शुभ होए बादशाह

0: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा।
1: कौन सा?
0: कैरेट लेन।
1: वेट, व्हाट? कैरेट लेन इंडिया वाला?
0: हाँ वही।
1: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली।
0: देखा, ढूंढ के दिया ना।
2: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को, लाइटवेट रियल डायमंड्स मेड फॉर एवरीडे। कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट।
3: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
4: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
5: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
4: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
6: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
7: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
8: भूख लगी
9: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
11: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
12: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
14: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
15: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
16: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
15: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
17: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m. Join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
14: For booth and sponsorship contact admin@ambuj.us.
18: Tracks that put you on the right track.

Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ। कुछ कारण के वजह से आज थोड़ा सा साथ देने के लिए लेट हो गया है। स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं 36 मिनट्स पास्ट 6 और अभी से आपका और मेरा साथ शुरू हो गया है और ये साथ रहने वाला है रात के ठीक 8 बजे तक। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फॉगी, गर्मी वाली और आज जैसे अभी हो गई है बहुत सुहानी। कैसे भी हो, हमें तो अच्छी लगती है बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल। गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के।

जी हाँ, राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक्स टू पार्टी, राधा लाइक्स टू मूव डांस, देसी राधा पार्टी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में। आज के हमारे शो का कोई एजेंडा नहीं है, कोई थीम नहीं है, हल्के फुल्के ऐसे ही बॉलीवुड के गाने हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। अगर आपको कोई गाना सुनने की इच्छा, आकांक्षा और मनोकामना है, आप मुझे डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। जो भी गाना आप रिक्वेस्ट करेंगे, जस्ट इट शुड बी फ्रॉम द ईयर 1990 एंड अबाउ। हैप्पी हैप्पी चौपी सॉन्ग यहाँ पे चल रहे हैं, उस बात का गौर फरमाइए। और इसी के साथ लेकर चलती हूँ आपको अगले गाने की तरफ। एंजॉय दिस ट्रैक।

मर जा रहा ओए। जी हाँ, गल्ला गुड़िया करते करते ही हमारी शाम गुजरनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गल्ला गुड़िया अगर हम हमारे दोस्तों के साथ, हमारे चहेते लोगों के साथ अगर करते हैं तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। और अगर अच्छे दिन को और ज्यादा अच्छा बिताना है आपको, तो आप प्लीज सुनते रहिए 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो। जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है उन सभी को बता देती हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर के साथ ही आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। आज के हमारे शो की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई थीम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। जो भी गाने अगर आप हल्के फुल्के सुनना चाहते हैं, हैप्पी चौपी सॉन्ग्स, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर 9722355555 है। द ओनली कंडीशन इज दैट जो भी गाने रिक्वेस्ट करेंगे इट शुड बी फ्रॉम द ईयर 1990 एंड अबव। विद दैट लेकर चलती हूँ आपको अगले रिक्वेस्टेड गाने की तरफ। दिस वन इज टेकन फ्रॉम द मूवी कोई मिल गया।

ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गाना दोस्तों, उदित नारायण और चित्रा की आवाज में सुन रहे थे आप टेकन फ्रॉम द मूवी कोई मिल गया। बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट लाइन अप हो चुके हैं दोस्तों, अगर आपको भी आपकी रिक्वेस्ट लाइन अप करनी है 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, जो भी गाने रिक्वेस्ट करेंगे इट शुड बी फ्रॉम द ईयर 1990 एंड अबव। अगले गाने की तरफ जाएंगे, उससे पहले बता दूं द ड्रीम होम मॉर्गेज हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998। इट इज लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स, देयर एक्सपर्ट टीम डिलीवर्स स्ट्रेस फ्री टेलर्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस, सो मेक योर ड्रीम होम अ रियलिटी विद ड्रीम होम मॉर्गेज। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल देम, द नंबर टू कॉल इज 9722455626 or you can visit their website which is dreamhomemortgage.com। agla gana sanjeev ji ki request par।

जी हाँ, घुंघरू टूट गए तब तक मैं नाचूंगी, ऐसा कहना चाहती है ये वाणी कपूर. ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ पे पिक्चराइज थी ये मूवी विच वॉज अ वॉर. वेल दोस्तों, ये शाम मस्तानी शो में मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये शाम मस्तानी, दुवानी, तुवानी, बेकानी कैसे भी हो, हमें तो अच्छी लगती है सुरीली और म्यूजिकल. तो अभी अभी मुझे मरियम और सोहेल का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि अभी बारिश का मौसम हो चुका है बाहर. जी हाँ, तो अगर रिमझिम बारिश का मौसम हो चुका है तो ये गाना सुनना तो लाजमी है. एंड उनकी रिक्वेस्ट पर 1942 अ लव स्टोरी का ये वाला गाना आप सबके लिए. एंजॉय द वेदर एंड एंजॉय दिस लवली लवली ट्रैक विथ योर लव्ड वन.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
11: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी।